0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी।
1: हाँ जी।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं

0: वादे मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674 AM
3: रेडियो हांजी 1674 AM। आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा, चढ़दी कला च होगे, उस रब दा कर रहे होगे शुकराना, चेहरे ते होगी मुस्कुराहट, जेकर नहीं ते आओ सब तो पहला चेहरे ते मुस्कुराहट लेके आइए। कोशिश करो बिल्कुल इस तरह सारा दिन ये खुशी तुहाडे चेहरे ते बनी रहे, ये मुस्कुराहट इस चीज़ का सबूत है कि तुम खुश हो दियां दित्तियां दातां तो। समा हो चुका अज की कहानी का, दूरों आवाज आती है, वैसे आवाज पहली बारी नहीं आई, हुण तां उह आदी हो चुका ये आवाज सुनदा, वे नखत्या तैनू किन्नी बारी कहा करा ला दूसरा व्याह, इस कलैणी की कुख तो तैनू कुछ नहीं मिलने वाला, सानू वारस चाहिदा वारस। जदों पंजवीं धी ने जन्म लिया तां सुलखण सिंह दी मां दी एक वारी फिर उदां दी कूक निकली। सुलखण सिंह दी मां मेहर कौर बड़ा बुरा भला बोलदी, जिदां जिदां धीआं दी गिनती वधदी जांदी उदां उदां उहदे अंदर दा गुस्सा होर भी वधदा जांदा। इस तों पहलां चार धीआं हो चुकियां सी सुरजन सिंह दीआं, नीले आसमान वाल वेखदिया सुरजन सिंह ने रब अगे आवाज मारी, रब नूं कोसिया ना मेरे तो किहड़ा गुनाह हो गया रबा, मैं किहड़ा तेरे वस दे बाग उजाड़े ने, दस मैनू भी एक जी दे दिंदा। इसे तरह के नाल उन्हें भी हर वार की तरह अपने मन की पड़ास कढ़ी ते फिर हौली जी कहन लगा कोई ना रबा शायद इहदे विच भी तेरी कोई रजा होगी, इहदे विच भी कुछ चंगा ही होगा। ते उधर सुरजन सिंह दी घरवाली नसीब कौर, उसने अपने सस नूं कदी भी माड़ा चंगा नहीं बोलिया, वह हमेशा इहो ही कहिंदी रहिंदी जो रब दी मर्जी। वेखो जी तुहाडी मां बिल्कुल सच कहिंदी है, रब साडे नाल नाराज आ किसे गल्लों। मैं तां कहिंदी हां तुसीं बीजी दी मन लो, मैनू कोई इतराज नहीं होगा, दिलों कहनी आ सच्चे वैगुरू की सहु तुसीं करवा लो दूजा व्याह। तुहानू धीआं दी भी कोई चिंता करन दी लोड़ नहीं, मैं सांभ लूंगी अपनियां धीआं, शायद रब इहो ही चाहुंदा। इसे करके तां वार वार बीजी दे मूंह भी ये गल्लां खवाउंदा, सच जाने मैनू कोई गिला शिकवा नहीं होगा तुहाडे नाल, मैं मरदे दम तक इत्थे ही करदी रहूंगी, इसे घर च ही करदी रहूंगी, इन्हां धीआं दा करदी रहूंगी, तुहाडा करदी रहूंगी। मैनू तां यकीन है जी एक दिन मेरियां धीआं इहो ही मेरा पुत बणनगियां। अगों सुरजन सिंह बोलिया पंजवीं कुड़ी तों बाद सुजन सिंह की घरवाली नसीब कौर जहानों कूच करके। सुजन सिंह ते उस दियां धीआं दे जिदा पहाड़ टुट पिया होवे, पर इस दी मां फिर भी बोलणों नहीं अड़दी सी, किसी वेले अपने पुत नूं सुना दिंदी, किसी वेले उस जहानों गई नौ नूं सुना दिंदी, किसी वेले अपनियां पोतियां नूं, वह भी कितना कित अपना आप अपने अंदरों गुब गुभार कढ़दी रहिंदी। आप तां मर गई है पर पंज पत्थर जम के इस वेड़े दे विच सुट गई, सारी उम्र मेरे पैरां दे विच वज्जण दे लई, बुढ़ी उम्र इन्हां पत्थरां दे ठेडे खांदी रही। ਉਥੋਂ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਪੰਜਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਧੀਏ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਾਏਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਪੰਜਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦਾ ਡੰਗਰ ਵਛਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ।